लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

चम चम चम चम छठी लगे चम चम विजय गम गम चम चम चम चम चम चम चम चम चम छठी लगे

0: हटकत लुगड़े सुसकी चोरी
1: अगर तीतरी कुठे मिलती
0: आओ फटकत लुगड़े सुसकी चोरी
1: मग शिवन घेती।

0: क्या हुआ? कश्ती क्यों मोड़ ली? मुझे नहीं मिलवाओगे?
1: अश्विनी, आज वो अपने एक ऐसे दोस्त के साथ हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
0: तुम भी तो अपने दोस्त के साथ हो, मैं भी चलाऊंगी।

चाहे लग जाए हथकड़िया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे लग जाए हथकड़िया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। मन तुझ पे नियत कर ली।

पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं

हम तो है राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

0: दखल लिया। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखलंदाजी हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं।
1: इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
0: सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
1: देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे।
0: देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है।
1: क्या
0: इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है।
1: बदतमीज।
0: शुक्रिया। अच्छा सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखिएगा, फिर आके ले जाऊंगा।
1: मारो इसे।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।